0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: ये है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, सोफिया जमशेद और वसीमा आबिद।
0: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। जी सामईन, कहिए कैसे हैं आप?
1: उम्मीद है सब मज़े में होंगे। ईद उल अज़हा थी, अगरचे अब तकरीबन 10-12 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन सब सामईन को गुज़िश्ता ईद उल अज़हा मुबारक और फ़रीज़े हज अदा करने वाले तमाम असहाब को भी दिली मुबारकबाद।
0: बकरीद कुर्बानी का गोश्त बनाने, खाने और बांटने का त्यौहार है। वैसे तो दुनिया के किसी खत्ते में कहीं भी कोई भी रिवायती त्यौहार हो, वो रिवायती खानों के बगैर नामुकम्मल रहता है, लेकिन ख़ास तौर पर बकरीद का तस्वुर ही खुर्दनोश से जुड़ा है।
2: सूफिया, जापानी सकाफत के खाने पकाने से वाबस्ता एक पहलू का जिक्र करूँ?
1: खाने पीने के जिक्र से ही तखयल में जायकेदार खाने आने लगे।
0: मुँह में पानी तो नहीं आया ना, क्योंकि वसीमा कोई डिश तो लाई नहीं है, सिर्फ जिक्र पर ही तरखा रही हैं। चलिए इस खास पहलू का जिक्र कर ही डालिए आप।
2: अरे नहीं, अब लाऊंगी, आइंदा जरूर लाऊंगी। वैसे सामीन, आपको बताते चलें कि जापान में हर साल जून का महीना गजाइत से मुतलिक आगाही बढ़ाने के लिए मुख्तस किया गया है। इसकी मखसूस इस्तिलाह है शोकु इकु।
0: शोकु इकु में शोकु से मुराद खाना है और इकु आगाही को कहते हैं।
2: और इस शोकु इकु से मुराद लोगों को, खसूसन बच्चों को, खुराक मुंतखब करने, गजाइत के लिहाज से मुतवाजन खाने और खुराक का ज़ियार रोकने की आगही देना है। सामिन, यह लफ्ज़ जापान में 2005 में खुराक की तालीम के बुनियादी कानून के नफाज के साथ आम हुआ।
1: खाने पीने की सेहतमंद आदात तवाना मुआशरे की बुनियादी इकाई हैं। पाकुहिन में दस्तरखान के आदाब पर बड़ी तवज्जो दी जाती है, लेकिन इसके लिए खास तौर पर कानून साजी की जरूरत क्यों पड़ी?
0: खलील साहब, पहले जमाने में जापान में भी ऐसे ही था। खाने के आदाब घराने से रोजमर्रा की तरबियत से जुड़े हुए थे। ताहम सुना है कि 20वीं सदी के बाद जापान की तेज माशी तरक्की के दौर में तर्ज जिंदगी में नुमाया तब्दीली आने से खुराक से मुतालिक मसाइल सामने आए, जिनमें अकेले अहले खाना के साथ खाने के बजाय अकेले खाने और बाहर खाने की शरह में इजाफा शामिल है।
2: अरे हाँ, दस्तर

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 8 जून सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार यूटीसी समयानुसार रविवार रात करीब 11:38 पर दक्षिणी फिलीपींस के मिंदनाओ द्वीप के तट के पास एक शक्तिशाली भूकंप आया। अनुमान है कि इस भूकंप का मैग्नीट्यूड 8.2 रहा। अमरीकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन NOAA का कहना है कि फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान सहित कई क्षेत्रों में सुनामी लहरों का खतरा है। NOAA ने चेतावनी दी है कि 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें फिलीपींस के तट तक पहुंच सकती हैं, जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया के तटों पर 0.3 से 1 मीटर ऊंची लहरें आने की आशंका है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने ओकिनावा प्रीफेक्चर से लेकर इबाराकी प्रीफेक्चर तक जापान के दक्षिणी तट के लिए सुनामी चेतावनी जारी की थी, लेकिन सोमवार शाम 4:50 पर इसे हटा लिया गया। फिलिपीनी मीडिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें भूकंप के केंद्रों के पास स्थित मिंदनाओ द्वीप के जनरल सेंटोस में हुए नुकसान को

किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि ये हालिया हमला हिजबुल्ला द्वारा इसराइल पर की गई गोलीबारी के जवाब में किया गया। इजरायली मीडिया ने बताया कि रविवार का हमला 8 अप्रैल को संघर्ष विराम लागू होने के बाद से ईरान द्वारा इसराइल पर किया गया पहला हमला था। ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार मोहसेन रेजाई ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा, इस्लामिक गणराज्य ईरान ने बार बार कहा है कि वो संघर्ष विराम का उल्लंघन और लेबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। हमलावरों को आज रात इसका जवाब मिल गया। उन्होंने आगे कहा, ये प्रतिक्रिया एक चेतावनी है कि वो अपनी करतूतें बंद कर दें, किसी भी नई कार्रवाई का इससे भी करारा जवाब दिया जाएगा और उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली सेना का कहना है कि इजरायल की वायुसेना ने पश्चिमी और मध्यवर्ती ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायली सेना ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन हमलों की जानकारी दी। इससे पहले उसने घोषणा की थी कि ईरान से इजरायल की ओर मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान की सरकार समर्थक समाचार एजेंसी महर ने सोमवार तड़के बताया कि राजधानी तेहरान और ईरान के पश्चिमोत्तर में स्थित तबरीज और इस्फहान में कई जोरदार धमाके सुने गए।

ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वीडन के विचार मंच स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान का कहना है कि कुछ देश राष्ट्रीय शक्ति के साधन के रूप में परमाणु अस्त्रों पर तेजी से निर्भर होते जा रहे हैं, जिससे इन हथियारों की संख्या और भूमिका को कम करने के प्रयासों पर उल्टा असर पड़ रहा है। संस्थान ने सोमवार को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि जनवरी 2026 में परमाणु शक्ति संपन्न देशों के पास अनुमानित 12,187 हथियार थे, जो एक साल पहले की तुलना में 54 कम हैं। अनुमान है कि रूस के पास 5,420 और अमेरिका के पास 5,042 हथियार हैं। माना जाता है कि इन दोनों देशों के पास दुनिया के कुल परमाणु अस्त्रों का 80% से अधिक हिस्सा है। संस्थान का अनुमान है कि 620 परमाणु अस्त्रों के साथ चीन के पास तीसरा सबसे बड़ा भंडार है और उसका परमाणु शस्त्रागार किसी भी अन्य देश की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। अनुमानित 4,012 यानी 30% से अधिक अस्त्र मिसाइलों और विमानों पर तैनात किए गए, जो एक वर्ष पहले की तुलना में लगभग 100 अधिक हैं। फरवरी में अमेरिका और रूस के बीच परमाणु अस्त्र कटौती से संबद्ध न्यू स्टार्ट नामक एकमात्र अंतिम संधि की अवधि समाप्त हो गई थी। मार्च में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल माक्रों ने कहा था कि उनका देश परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाएगा। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों का कहना है कि वे अगले महीने कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएंगे। सऊदी अरब और रूस सहित प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने रविवार को ऑनलाइन बैठक की। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE रविवार की बैठक में शामिल नहीं हुआ। गौरतलब है कि UAE ने घोषणा की थी कि वो 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से अलग हो जाएगा। 7 सदस्यों का कहना है कि वे जून की तरह जुलाई में भी उत्पादन में प्रतिदिन 1,88,000 बैरल की वृद्धि करेंगे। उत्पादन में ये बढ़ोतरी लगातार 4th महीने की जाएगी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की आपूर्ति अब भी प्रतिबंधित है। माना जा रहा है कि उत्पादन में ये वृद्धि इस जलमार्ग के खुलने की संभावना के मद्देनजर की जा रही है। अमेरिका ईरान संघर्ष विराम वार्ता की संभावनाएं एक बार फिर अनिश्चित हो जाने से जुड़ी चिंताओं के चलते शुक्रवार को न्यूयॉर्क में कच्चे तेल के भावी सौदों का WTI सूचकांक $90 प्रति बैरल के आसपास उच्च बना रहा। टोक्यो के निक्के 225 शेयर सूचकांक में सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट जारी रही। निवेशकों पर पिछले सप्ताह अमेरिकी शेयरों में आई भारी गिरावट का असर देखा गया। सेमीकंडक्टर संबंधी शेयरों की बिकवाली का जोर रहा, जिसके चलते सूचकांक ने 4.7% यानी 3,100 अंकों का गोता लगाया। पिछले शुक्रवार को न्यूयॉर्क के प्रमुख सूचकांकों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों वाले नैस्डैक में सबसे भारी गिरावट देखी

0: गई थी। अमेरिका में मजबूत रोजगार आंकड़ों से निवेशकों में चिंता बढ़ गई कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा सकता है। बाजार को ऊंचाइयां देने वाले एआई संबंधी शेयरों को लेकर कारोबारी सतर्क हो गए हैं।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार यूटीसी समयानुसार रविवार रात करीब 11:38 पर दक्षिणी फिलीपींस के मिंदनाओ द्वीप के तट के पास एक शक्तिशाली भूकंप आया। अनुमान है कि इस भूकंप का मैग्नीट्यूड 8.2 रहा। अमरीकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन NOAA का कहना है कि फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान सहित कई क्षेत्रों में सुनामी लहरों का खतरा है। NOAA ने चेतावनी दी है कि 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें फिलीपींस के तट तक पहुंच सकती हैं, जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया के तटों पर 0.3 से 1 मीटर ऊंची लहरें आने की आशंका है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने ओकिनावा प्रीफेक्चर से लेकर इबाराकी प्रीफेक्चर तक जापान के दक्षिणी तट के लिए सुनामी चेतावनी जारी की थी, लेकिन सोमवार शाम 4:50 पर इसे हटा लिया गया।
0: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 15वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं।
1: चीन से जापान आई फोटोग्राफर मिया ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंडों की तस्वीरें खींचने नागानो प्रिफेक्चर आई है। वो टैक्सी चालक को बताना चाहती है कि उसे जिगोकुदानी यायन कोएन जाना है। वो जगह सर्दियों में ओनसेन के गर्म पानी में बैठे बंदर देखने के लिए प्रसिद्ध है।
0: तो आज के पाठ में सुनते हैं टैक्सी चालक से मिया की बातचीत।
2: どちらまで？
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから、猿がたくさん温泉に入ってますよ。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले टैक्सी चालक ने पूछा,
2: दोचिरा मदे,
0: कहाँ जाएंगी?
1: मिया ने उत्तर दिया,
3: सारु नो ओनसेन मदे ओनेगाई शिमास,
1: बंदरों वाले ओनसेन जाना है।
0: फिर टैक्सी चालक ने कहा,
2: हाई वाकारिमाश्ता,
0: जी समझ गया।
2: कोचिरा हाजिमेते देस्का,
0: यहाँ पहली बार आई हैं?
1: मिया ने कहा,
3: हाई हाजिमेते देस,
1: जी पहली बार है। बंदरों की तस्वीरें खींचने जा रही हूँ।
0: ये सुनकर टैक्सी चालक ने कहा,
2: सो देस का,
0: अच्छा
2: क्यों वा समुई करा, सारु गा तकसान ओनसेन नी हाइट्ते मास यो,
0: आज ठंड है इसलिए बहुत सारे बंदर ओनसेन में बैठे हैं।
1: ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड में नहाने वाले बंदरों का अंग्रेजी नाम है जापानीज मकाक, लेकिन आमतौर पर लोग उन्हें हिम बानर कहते हैं।
0: ये उद्यान दूर पहाड़ पर है। टैक्सी या बस से उतरने के बाद भी यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग आधे घंटे चलना पड़ता है। बर्फ पड़ने के बाद यहाँ तक आना मुश्किल भी हो सकता है, फिर भी बहुत सारे पर्यटक ये उद्यान देखने आते हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
3: सारु नो ओनसेन मदे ओनेगाई शिमास,
1: यानी बंदरों वाले ओनसेन जाना है। ये वाक्य याद करके आप टैक्सी चालक को बता सकेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं।
0: इस वाक्य में
4: सारु नो ओनसेन
0: का अर्थ है बंदरों वाला ओनसेन, जिसमें से
4: सारु
0: का मतलब है बंदर,
4: ओनसेन
0: का मतलब है गर्म पानी का कुंड, और नो इन दोनों संज्ञाओं को जोड़ने वाला कारक है। पहली संज्ञा दूसरी संज्ञा की विशेषता बता रही है।
4: मादे
1: का अर्थ है तक, और
4: ओनेगाई शिमास
1: का भाव है कृपया। इसका उपयोग अनुरोध करते समय किया जाता है।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस जगह जाना हो उसके नाम के बाद
4: मादे
0: लगाते हैं और उसके बाद बोलते हैं
4: ओनेगाई शिमास।
1: तो सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
4: ओनेगाई शिमास, サルの温泉までお願いします。サルの温泉までお願いします。
0: अब सुनते हैं टैक्सी चालक और सवारी के बीच एक छोटी सी बातचीत।
5: どちらまでですか？
6: 空港までお願いします。
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले टैक्सी चालक ने पूछा,
5: दोचिरा मादे देस का,
0: कहाँ जाएंगे?
4: दोचिरा मादे
1: में
4: दोचिरा
1: प्रश्नवाचक शब्द है और इसका अर्थ है कहाँ। ये
4: दोको
1: से अधिक विनम्र है।
0: सवारी ने उत्तर दिया,
6: कूको मादे ओनेगाई शिमास,
0: हवाई अड्डे जाना है।
4: कूको
1: का अर्थ है हवाई अड्डा। इस शब्द में ऊ और ओ की ध्वनियां लंबी हैं।
0: तो आप भी सुनिए और दोहराइए।
4: कूको, 空港までお願いします。
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए. मान लीजिए आपको टोक्यो स्काई ट्री जाना है, तो ये बात टैक्सी चालक को कैसे बताएंगे? टोक्यो स्काई ट्री का जापानी उच्चारण है
4: टोक्यो स्काई ट्री, टोक्यो स्काई ट्री.
1: तो कोशिश कीजिए.
3: टोक्यो स्काई ट्री までお願いします.
0: कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ में कोई पर्ची या नक्शा हो. मान लीजिए आप नक्शा दिखाते हुए टैक्सी चालक से कहना चाहते हैं कि इस होटल में जाना है. इस होटल के लिए जापानी में हम कहेंगे
4: कोनो होटेल, कोनो होटेल.
0: तो कोशिश कीजिए.
5: कोनो होटेल までお願いします。
1: अब समय है संबंधित शब्द सीखने का. आज हम पाठ की बातचीत में से ही एक वाक्यांश के बारे में विस्तार से बताएंगे. ये वाक्यांश है
0: संज्ञा के बाद
4: जोड़कर
0: आप विभिन्न अनुरोध कर सकते हैं. जैसे होटल से चेकआउट करते समय ये कह सकते हैं
4: चेकआउट ओनेगाइशिमस.
0: कॉफी मंगवाने के लिए आप कह सकते हैं
4: कोही ओनेगाइशिमस.
0: इसमें कॉफी के लिए जापानी शब्द है
4: कोही, कोही.
1: इसके अलावा रेस्तरां में बिल मंगवाते समय आप कह सकते हैं
4: ओकाइके ओनेगाइशिमस.
1: यहाँ बिल के लिए जापानी शब्द है
4: ओकाइके, ओकाइके.
0: तो सुनिए और दोहराइए
4: चेकआउट ओनेगाइशिमस, कोही ओनेगाइशिमस.
1: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं.
2: どちらまで?
3: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか?
3: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
7: 春さんの知恵袋。
0: और अब बारी है अंश हारू जी की सलाह की. आज हम बता रहे हैं जापान की टैक्सी के बारे में.

0: जापान में टैक्सी का किराया दूरी से तय होता है। ये किराया आप मीटर पर देख सकते हैं, इसलिए मोल भाव करने की जरूरत नहीं है।
1: टैक्सी पकड़ने के लिए टैक्सी स्टैंड जाएं। जापान में अधिकतर हवाई अड्डों, स्टेशनों, होटलों और पर्यटन स्थलों के बाहर टैक्सी स्टैंड होते हैं। शहरों में आप सड़क पर हाथ से इशारा करके भी टैक्सी रोक सकते हैं।
0: आपको टैक्सी का पिछला दरवाजा खुद खोलने या बंद करने की जरूरत नहीं है, इसे चालक रिमोट कंट्रोल से खोलते और बंद करते हैं।
1: टैक्सी खाली है या नहीं, ये आप सामने की खिड़की पर लगे इलेक्ट्रॉनिक सूचना पटल से जान सकते हैं। खाली टैक्सी में पटल पर कांजी अक्षरों से लिखा होता है
2: खुशा,
1: यानी खाली। ये कांजी अक्षर पहले से याद कर लेंगे तो जापान में काम आएंगे।
0: वैसे आप फोन करके भी टैक्सी बुला सकते हैं, और आजकल तो टैक्सी सेवा के ऐप भी उपलब्ध हैं। कुछ में अंग्रेजी भाषा की सुविधा भी है। कम आबादी वाली जगह जा रहे हों तो पहले से टैक्सी बुक कर लेना अच्छा रहता है।
1: यूं तो टैक्सी सुविधाजनक होती है, लेकिन बड़े शहरों में अक्सर जाम लग जाते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा समय लग जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यात्रा का समय बढ़ने पर किराया भी बढ़ जाता है।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में मियां बंदरों वाला ओनसेन देखेंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 8 जून सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार यूटीसी समयानुसार रविवार रात करीब 11:38 पर दक्षिणी फिलीपींस के मिंदनाओ द्वीप के तट के पास एक शक्तिशाली भूकंप आया। अनुमान है कि इस भूकंप का मैग्नीट्यूड 8.2 रहा। अमरीकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन NOAA का कहना है कि फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान सहित कई क्षेत्रों में सुनामी लहरों का खतरा है। NOAA ने चेतावनी दी है कि 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें फिलीपींस के तट तक पहुंच सकती हैं, जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया के तटों पर 0.3 से 1 मीटर ऊंची लहरें आने की आशंका है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने ओकिनावा प्रीफेक्चर से लेकर इबाराकी प्रीफेक्चर तक जापान के दक्षिणी तट के लिए सुनामी चेतावनी जारी की थी, लेकिन सोमवार शाम 4:50 पर इसे हटा लिया गया। फिलिपीनी मीडिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें भूकंप के केंद्रों के पास स्थित मिंदनाओ द्वीप के जनरल सैंटोस में हुए नुकसान को दिखाया गया है। एक स्थानीय मीडिया केंद्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मिंदनाओ द्वीप पर दावाओ के पास स्थित एक हाई स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में 2 मंजिला इमारत दिखाई दे रही है, जिसका भूतल का कुछ हिस्सा ढहकर विकृत हो गया है। इसके साथ ही कुछ हिस्सों में दरारें भी दिखाई दे रही हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने सरकारी एजेंसियों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान ने रविवार रात करीब 10 बजे इसराइल की ओर मिसाइलें दागी। इससे पहले इजरायली सेना ने घोषणा की थी कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत के पास ईरान समर्थित शिया मुस्लिम गुट हिजबुल्ला के मुख्यालय पर हमला

ये प्रतिक्रिया एक चेतावनी है कि वो अपनी करतूतें बंद कर दें। किसी भी नई कार्रवाई का इससे भी करारा जवाब दिया जाएगा और उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली सेना का कहना है कि इजरायल की वायुसेना ने पश्चिमी और मध्यवर्ती ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायली सेना ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन हमलों की जानकारी दी। इससे पहले उसने घोषणा की थी कि ईरान से इजरायल की ओर मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान की सरकार समर्थक समाचार एजेंसी मेहर ने सोमवार तड़के बताया कि राजधानी तेहरान और ईरान के पश्चिमोत्तर में स्थित तबरीज और इस्फहान में कई जोरदार धमाके सुने गए।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वीडन के विचार मंच स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान का कहना है कि कुछ देश राष्ट्रीय शक्ति के साधन के रूप में परमाणु अस्त्रों पर तेजी से निर्भर होते जा रहे हैं, जिससे इन हथियारों की संख्या और भूमिका को कम करने के प्रयासों पर उल्टा असर पड़ रहा है। संस्थान ने सोमवार को जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि जनवरी 2026 में परमाणु शक्ति संपन्न देशों के पास अनुमानित 12,187 हथियार थे, जो एक साल पहले की तुलना में 54 कम हैं। अनुमान है कि रूस के पास 5,420 और अमेरिका के पास 5,042 हथियार हैं। माना जाता है कि इन दोनों देशों के पास दुनिया के कुल परमाणु अस्त्रों का 80% से अधिक हिस्सा है। संस्थान का अनुमान है कि 620 परमाणु अस्त्रों के साथ चीन के पास तीसरा सबसे बड़ा भंडार है और उसका परमाणु शस्त्रागार किसी भी अन्य देश की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। अनुमानित 4,012 यानी 30% से अधिक अस्त्र मिसाइलों और विमानों पर तैनात किए गए, जो एक वर्ष पहले की तुलना में लगभग 100 अधिक हैं। फरवरी में अमेरिका और रूस के बीच परमाणु अस्त्र कटौती से संबद्ध न्यू स्टार्ट नामक एकमात्र अंतिम संधि की अवधि समाप्त हो गई थी। मार्च में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा था कि उनका देश परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाएगा। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों का कहना है कि वे अगले महीने कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएंगे। सऊदी अरब और रूस सहित प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने रविवार को ऑनलाइन बैठक की। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई रविवार की बैठक में शामिल नहीं हुआ। गौरतलब है कि यूएई ने घोषणा की थी कि वो 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से अलग हो जाएगा। 7 सदस्यों का कहना है कि वे जून की तरह जुलाई में भी उत्पादन में प्रतिदिन 188,000 बैरल की वृद्धि करेंगे। उत्पादन में ये बढ़ोतरी लगातार 4th महीने की जाएगी। होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की आपूर्ति अब भी प्रतिबंधित है। माना जा रहा है कि उत्पादन में ये वृद्धि इस जलमार्ग के खुलने की संभावना के मद्देनजर की जा रही है। अमेरिका ईरान संघर्ष विराम वार्ता की संभावनाएं एक बार फिर अनिश्चित हो जाने से जुड़ी चिंताओं के चलते शुक्रवार को न्यूयॉर्क में कच्चे तेल के भावी सौदों का WTI सूचकांक $90 प्रति बैरल के आसपास उच्च बना रहा। टोक्यो के निक्के 225 शेयर सूचकांक में सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट जारी रही। निवेशकों पर पिछले सप्ताह अमेरिकी शेयरों में आई भारी गिरावट का असर देखा गया। सेमीकंडक्टर संबंधी शेयरों की बिकवाली का जोर रहा, जिसके चलते सूचकांक ने 4.7% यानी 3,100 अंकों का गोता लगाया। पिछले शुक्रवार को न्यूयॉर्क के प्रमुख सूचकांकों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों वाले नैस्डैक में सबसे भारी गिरावट देखी गई थी। अमेरिका में मजबूत रोजगार आंकड़ों से निवेशकों में चिंता बढ़ गई कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा सकता है। बाजार को ऊंचाइयां देने वाले AI संबंधी शेयरों को लेकर कारोबारी सतर्क हो गए हैं।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार UTC समयानुसार रविवार रात करीब 11:38 पर दक्षिणी फिलीपींस के मिंदनाओ द्वीप के तट के पास एक शक्तिशाली भूकंप आया। अनुमान है कि इस भूकंप का मैग्नीट्यूड 8.2 रहा। अमरीकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय

0: प्रशासन एनओएए का कहना है कि फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान सहित कई क्षेत्रों में सुनामी लहरों का खतरा है। एनओएए ने चेतावनी दी है कि 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें फिलीपींस के तट तक पहुंच सकती हैं, जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया के तटों पर 0.3 से 1 मीटर ऊंची लहरें आने की आशंका है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने ओकिनावा प्रीफेक्चर से लेकर इबाराकी प्रीफेक्चर तक जापान के दक्षिणी तट के लिए सुनामी चेतावनी जारी की थी, लेकिन सोमवार शाम 4:50 पर इसे हटा लिया गया।
1: इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 15वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं।
1: चीन से जापान आई फोटोग्राफर मिया ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंडों की तस्वीरें खींचने नागानो प्रीफेक्चर आई है। वो टैक्सी चालक को बताना चाहती है कि उसे जिगोकुदानी यायन कोएन जाना है। वो जगह सर्दियों में ओनसेन के गर्म पानी में बैठे बंदर देखने के लिए प्रसिद्ध है।
0: तो आज के पाठ में सुनते हैं टैक्सी चालक से मिया की बातचीत।
2: どちらまで?
3: 猿の温泉までお願いします。はい、わかりました。こちらは初めてですか?はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले टैक्सी चालक ने पूछा,
2: どちらまで?
0: कहाँ जाएंगी?
1: मिया ने उत्तर दिया,
4: 猿の温泉までお願いします।
1: बंदरों वाले ओनसेन जाना है।
0: फिर टैक्सी चालक ने कहा,
2: はい、わかりました।
0: जी, समझ गया।
2: こちらは初めてですか?
0: यहाँ पहली बार आई हैं?
1: मिया ने कहा,
4: はい、初めてです।
1: जी, पहली बार है।
4: 猿の写真を撮りに行きます।
1: बंदरों की तस्वीरें खींचने जा रही हूँ।
0: ये सुनकर टैक्सी चालक ने कहा,
2: そうですか।
0: अच्छा।
2: 今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ।
0: आज ठंड है इसलिए बहुत सारे बंदर ओनसेन में बैठे हैं।
1: ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड में नहाने वाले बंदरों का अंग्रेजी नाम है जापानीज मकाक, लेकिन आमतौर पर लोग उन्हें हिम वानर कहते हैं।
0: ये उद्यान दूर पहाड़ पर है। टैक्सी या बस से उतरने के बाद भी यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग आधे घंटे चलना पड़ता है। बर्फ पड़ने के बाद यहाँ तक आना मुश्किल भी हो सकता है। फिर भी बहुत सारे पर्यटक ये उद्यान देखने आते हैं।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
4: 猿の温泉までお願いします।
1: यानी बंदरों वाले ओनसेन जाना है। ये वाक्य याद करके आप टैक्सी चालक को बता सकेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं।
0: इस वाक्य में
5: सर नो ओनसेन
0: का अर्थ है बंदरों वाला ओनसेन, जिसमें से
5: सर
0: का मतलब है बंदर,
5: ओनसेन
0: का मतलब है गर्म पानी का कुंड, और नो इन दोनों संज्ञाओं को जोड़ने वाला कारक है। पहली संज्ञा दूसरी संज्ञा की विशेषता बता रही है।
5: मादे
1: का अर्थ है तक, और
5: お願いします
1: का भाव है कृपया। इसका उपयोग अनुरोध करते समय किया जाता है।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस जगह जाना हो उसके नाम के बाद
5: मादे
0: लगाते हैं और उसके बाद बोलते हैं
5: お願いします।
1: तो सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: お願いします। サルの温泉までお願いします。

0: 猿の温泉までお願いします。
1: अब सुनते हैं टैक्सी चालक और सवारी के बीच एक छोटी सी बातचीत।
2: どちらまでですか？
3: 空港までお願いします。
4: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले टैक्सी चालक ने पूछा,
2: どちらまでですか？
1: कहाँ जाएंगे?
0: どちらまで
4: में
0: どちら
4: प्रश्नवाचक शब्द है और इसका अर्थ है कहाँ। ये
0: どこ
4: से अधिक विनम्र है।
1: सवारी ने उत्तर दिया,
3: कूकों मादे ओनेगाई शिमास,
1: हवाई अड्डे जाना है।
0: कूकों
4: का अर्थ है हवाई अड्डा। इस शब्द में ऊ और ओ की ध्वनियां लंबी हैं।
1: तो आप भी सुनिए और दोहराइए,
0: कूकों कूकों मादे ओनेगाई शिमास।
4: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको टोक्यो स्काई ट्री जाना है, तो ये बात टैक्सी चालक को कैसे बताएंगे? टोक्यो स्काई ट्री का जापानी उच्चारण है
0: टोक्यो स्काई ट्री, टोक्यो स्काई ट्री।
4: तो कोशिश कीजिए,
5: टोक्यो स्काई ट्री मादे ओनेगाई शिमास।
1: कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ में कोई पर्ची या नक्शा हो। मान लीजिए आप नक्शा दिखाते हुए टैक्सी चालक से कहना चाहते हैं कि इस होटल में जाना है। इस होटल के लिए जापानी में हम कहेंगे
0: कोनो होटेरु, कोनो होटेरु।
1: तो कोशिश कीजिए,
2: कोनो होटेरु मादे ओनेगाई शिमास।
4: अब समय है संबंधित शब्द सीखने का। आज हम पाठ की बातचीत में से ही एक वाक्यांश के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये वाक्यांश है
0: ओनेगाई शिमास।
1: संज्ञा के बाद
0: ओनेगाई शिमास
1: जोड़कर आप विभिन्न अनुरोध कर सकते हैं। जैसे होटल से चेकआउट करते समय ये कह सकते हैं
0: चेकआउट ओनेगाई शिमास।
1: कॉफी मंगवाने के लिए आप कह सकते हैं
0: कॉफी ओनेगाई शिमास।
1: इसमें कॉफी के लिए जापानी शब्द है
0: कॉफी, कॉफी।
4: इसके अलावा रेस्तरां में बिल मंगवाते समय आप कह सकते हैं
0: ओकाइके ओनेगाई शिमास।
4: यहाँ बिल के लिए जापानी शब्द है
0: ओकाइके, ओकाइके।
1: तो सुनिए और दोहराइए,
0: चेक आउट ओनेगाई शिमास, कॉफी ओनेगाई शिमास, お会計お願いします。
4: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
6: どちらまで？
5: 猿の温泉までお願いします。
6: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
5: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
6: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
7: 春さんの知恵袋。
1: और अब बारी है अंश हारूजी की सलाह की। आज हम बता रहे हैं जापान की टैक्सी के बारे में।
4: जापान में टैक्सी का किराया दूरी से तय होता है। ये किराया आप मीटर पर देख सकते हैं, इसलिए मोल भाव करने की जरूरत नहीं है।
1: टैक्सी पकड़ने के लिए टैक्सी स्टैंड जाएं। जापान में अधिकतर हवाई अड्डों, स्टेशनों, होटलों और पर्यटन स्थलों के बाहर टैक्सी स्टैंड होते हैं। शहरों में आप सड़क पर हाथ से इशारा करके भी टैक्सी रोक सकते हैं।
4: आपको टैक्सी का पिछला दरवाजा खुद खोलने या बंद करने की जरूरत नहीं है। इसे चालक रिमोट कंट्रोल से खोलते और बंद करते हैं।
1: टैक्सी खाली है या नहीं, ये आप सामने की खिड़की पर लगे इलेक्ट्रॉनिक सूचना पटल से जान सकते हैं। खाली टैक्सी में पटल पर कांजी अक्षरों से लिखा होता है
0: खुशा
1: यानी खाली। ये कांजी अक्षर पहले से याद कर लेंगे तो जापान में काम आएंगे।
4: वैसे आप फोन करके भी टैक्सी बुला सकते हैं और आजकल तो टैक्सी सेवा के ऐप भी उपलब्ध हैं। कुछ में अंग्रेजी भाषा की सुविधा भी है। कम आबादी वाली जगह जा रहे हों तो पहले से टैक्सी बुक कर लेना अच्छा रहता है।
1: यूं तो टैक्सी सुविधाजनक होती है लेकिन बड़े शहरों में अक्सर जाम लग जाते हैं जिसके कारण बहुत ज्यादा समय लग जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यात्रा का समय बढ़ने पर किराया भी बढ़ जाता है।
4: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
1: अगले पाठ में मिया बंदरों वाला ओनसेन देखेंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। एक स्वीडिश थिंक टैंक का कहना है कि कुछ रियासतें कौमी ताकत के आलात के तौर पर जौहरी हथियारों पर ज्यादा इन्हिसार कर रही हैं और ऐसे हथियारों की तादाद और किरदार को कम करने की कोशिशों को उलट रही हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पीर को अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की। उसका कहना है कि जौहरी हथियारों से लैस ममालिक के पास जनवरी 2026 में अंदाजे के मुताबिक 12,187 वॉरहेड्स थे, जो एक साल पहले के मुकाबले में 54 कम हैं। एक अंदाजे के मुताबिक रूस के पास 5,420 वॉरहेड्स हैं। इसके बाद अमेरिका के पास 5,042 वॉरहेड्स हैं। ख्याल किया जाता है कि दोनों मालिक कुल आलमी तादाद के 80% से ज्यादा के मालिक हैं। इंस्टीट्यूट का कहना है कि चीन के पास 620 जौहरी वॉरहेड्स का तीसरा सबसे बड़ा जखीरा है और ये कि उसके जौहरी हथियार किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में तेजी से बढ़ रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 4,012 या 30% से ज्यादा वॉरहेड्स मिसाइलों और हवाई जहाजों के साथ तैनात किए गए थे। ये साल ब साल तैनात करदा वॉरहेड्स में तकरीबन 100 का इजाफा है। फरवरी में अमरीका और रूस के दरमियान जौहरी हथियारों में कमी का आखिरी मुहायदा न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो गया था। मार्च में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया था कि उनका मुल्क अपने जौहरी वॉरहेड्स की तादाद में इजाफा करेगा। ओपेक प्लस के 7 अरकान का कहना है कि वो अगले माह खाम तेल की पैदावार में इजाफा करेंगे। सऊदी अरब और रूस समेत तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक ने इतवार को एक ऑनलाइन इजलास मुनक्किद किया। मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसने 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से अलहदगी का ऐलान किया था, उसने इतवार के इजलास में हिस्सा नहीं लिया। 7 मेंबरान का कहना है कि वो जुलाई में भी जून के बराबर यानी योमिया 1,88,000 बैरल पैदावार बढ़ाएंगे। ये मुसलसल 4th महीने पैदावार में इजाफा होगा। अब नए हुरमुस के जरिए तेल की तरसील पर पाबंदी बरकरार है। ख्याल किया जाता है कि पैदावार में इजाफा आबी गुजरगाह के मुमकिन खुलने के रद्द अमल में है। जुमे के रोज न्यूयॉर्क में WTI खाम तेल के मुस्तकबिल के सौदे $90 फी बैरल की बुलंद हद में रहे। इसकी वजह ये तश्वीश थी कि अमरीका ईरान तनाजे के खात्मे के मुजाकरात का मुस्तकबिल दोबारा गैर वाज़ेह हो गया है। इशारे निक्के 225 ने पीर को इब्तदाई लेन देन में खसारे को बढ़ा दिया। मार्केट के ताजरों ने पिछले हफ्ते अमरीकी हिस्सेस मंडी में गिरावट से एक इशारा लिया है। सेमीकंडक्टर से मुतालिका हिस्सेस के लिए फरोख के ऑर्डर्स गालिब हैं। इंडेक्स मुख्तसर तौर पर 4.7% या 3,100 पॉइंट्स तक गिर गया। टेक हैवी नैसडेक में सबसे बड़े फर्क के इंदराज के साथ गुज़श्ता जुमे को न्यूयॉर्क में अहम इशारे गिर गए। अमरीकी मुलाजमतों की एक मजबूत रिपोर्ट ने सरमायाकारों में तशवीश पैदा कर दी है कि फेडरल रिजर्व शराय सूद में इजाफा कर सकता है। ताजिर AI से मुतालिका हिस्सेस के बारे में मुहतात हो गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी आई।
1: अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां। अमरीकी अर्जियाती सर्वे ने बताया है कि आलमी मियारी वक्त के मुताबिक इतवार की रात 11:00 तकरीबन 38 मिनट पर जनूबी फिलिपाइनी जजीरे मिंदानाओ में शदीद जलजला आया। जलजले की शिद्दत का तखमीना 8.2 बताया गया है। इसराइली फौज के मुताबिक इतवार की रात 10:00 के फौरन बाद ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल दागे हैं। इसराइल की फौज का कहना है कि इसराइली फिजाइया ने मगरबी और वस्ती ईरान में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और वीडियोज के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है

यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 8 जून सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार यूटीसी समयानुसार रविवार रात करीब 11:38 पर दक्षिणी फिलीपींस के मिंदनाओ द्वीप के तट के पास एक शक्तिशाली भूकंप आया। अनुमान है कि इस भूकंप का मैग्नीट्यूड 8.2 रहा। अमरीकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन NOAA का कहना है कि फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान सहित कई क्षेत्रों में सुनामी लहरों का खतरा है। NOAA ने चेतावनी दी है कि 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें फिलीपींस के तट तक पहुंच सकती हैं, जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया के तटों पर 0.3 से 1 मीटर ऊंची लहरें आने की आशंका है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने ओकिनावा प्रीफेक्चर से लेकर इबाराकी प्रीफेक्चर तक जापान के दक्षिणी तट के लिए सुनामी चेतावनी जारी की थी, लेकिन सोमवार शाम 4:50 पर इसे हटा लिया गया। फिलिपीनी मीडिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें भूकंप के केंद्रों के पास स्थित मिंदनाओ द्वीप के जनरल सैंटोस में हुए नुकसान को दिखाया गया है। एक स्थानीय मीडिया केंद्र ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि मिंदनाओ द्वीप पर दावाओ के पास स्थित एक हाई स्कूल की इमारत को नुकसान पहुंचा है। तस्वीरों में 2 मंजिला इमारत दिखाई दे रही है, जिसका भूतल का कुछ हिस्सा ढहकर विकृत हो गया है। इसके साथ ही कुछ हिस्सों में दरारें भी दिखाई दे रही हैं। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने सरकारी एजेंसियों को तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इजरायली सेना का कहना है कि ईरान ने रविवार रात करीब 10 बजे इसराइल की ओर मिसाइलें दागी। इससे पहले इजरायली सेना ने घोषणा की थी कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत के पास ईरान समर्थित शिया मुस्लिम गुट हिजबुल्ला के मुख्यालय पर हमला किया। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि ये हालिया हमला हिजबुल्ला द्वारा इसराइल पर की गई गोलीबारी के जवाब में किया गया। इजरायली मीडिया ने बताया कि रविवार का हमला 8 अप्रैल को संघर्ष विराम लागू होने के बाद से ईरान द्वारा इसराइल पर किया गया पहला हमला था। ईरान के सर्वोच्च नेता के सैन्य सलाहकार मोहसेन रेजाई ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा, इस्लामिक गणराज्य ईरान ने बार बार कहा है कि वो संघर्ष विराम का उल्लंघन और लेबनान पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। हमलावरों को आज रात इसका जवाब मिल गया। उन्होंने आगे कहा, ये प्रतिक्रिया एक चेतावनी है कि वो अपनी करतूतें बंद कर दें, किसी भी नई कार्रवाई का इससे भी करारा जवाब दिया जाएगा और उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायली सेना का कहना है कि इजरायल की वायुसेना ने पश्चिमी और मध्यवर्ती ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायली सेना ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इन हमलों की जानकारी दी। इससे पहले उसने घोषणा की थी कि ईरान से इसराइल की ओर मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान की सरकार समर्थक समाचार एजेंसी महर ने सोमवार तड़के बताया कि राजधानी तेहरान और ईरान के पश्चिमोत्तर में स्थित तबरीज और इस्फहान में कई जोरदार धमाके सुने गए।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। स्वीडन के विचार मंच स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान का कहना है कि कुछ देश राष्ट्रीय शक्ति के साधन के रूप में परमाणु अस्त्रों पर तेजी से निर्भर होते जा रहे हैं, जिससे इन हथियारों की संख्या और भूमिका को कम करने के प्रयासों पर उल्टा असर पड़ रहा है। संस्थान ने

0: मिसाइलों और विमानों पर तैनात किए गए, जो एक वर्ष पहले की तुलना में लगभग 100 अधिक हैं। फरवरी में अमेरिका और रूस के बीच परमाणु अस्त्र कटौती से संबद्ध न्यू स्टार्ट नामक एकमात्र अंतिम संधि की अवधि समाप्त हो गई थी। मार्च में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा था कि उनका देश परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ाएगा। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों का कहना है कि वे अगले महीने कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाएंगे। सऊदी अरब और रूस सहित प्रमुख तेल उत्पादक देशों ने रविवार को ऑनलाइन बैठक की। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई रविवार की बैठक में शामिल नहीं हुआ। गौरतलब है कि यूएई ने घोषणा की थी कि वो 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से अलग हो जाएगा। 7 सदस्यों का कहना है कि वे जून की तरह जुलाई में भी उत्पादन में प्रतिदिन 1,88,000 बैरल की वृद्धि करेंगे। उत्पादन में ये बढ़ोतरी लगातार चौथे महीने की जाएगी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की आपूर्ति अब भी प्रतिबंधित है। माना जा रहा है कि उत्पादन में ये वृद्धि इस जलमार्ग के खुलने की संभावना के मद्देनज़र की जा रही है। अमेरिका ईरान संघर्ष विराम वार्ता की संभावनाएं एक बार फिर अनिश्चित हो जाने से जुड़ी चिंताओं के चलते शुक्रवार को न्यूयॉर्क में कच्चे तेल के भावी सौदों का WTI सूचकांक $90 प्रति बैरल के आसपास उच्च बना रहा। टोक्यो के निक्के 225 शेयर सूचकांक में सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट जारी रही। निवेशकों पर पिछले सप्ताह अमेरिकी शेयरों में आई भारी गिरावट का असर देखा गया। सेमीकंडक्टर संबंधी शेयरों की बिकवाली का जोर रहा, जिसके चलते सूचकांक ने 4.7% यानी 3,100 अंकों का गोता लगाया। पिछले शुक्रवार को न्यूयॉर्क के प्रमुख सूचकांकों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों वाले नैस्डैक में सबसे भारी गिरावट देखी गई थी। अमेरिका में मजबूत रोजगार आंकड़ों से निवेशकों में चिंता बढ़ गई कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा सकता है। बाजार को ऊंचाइयां देने वाले AI संबंधी शेयरों को लेकर कारोबारी सतर्क हो गए हैं।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार UTC समयानुसार रविवार रात करीब 11:38 पर दक्षिणी फिलीपींस के मिंदनाओ द्वीप के तट के पास एक शक्तिशाली भूकंप आया। अनुमान है कि इस भूकंप का मैग्नीट्यूड 8.2 रहा। अमरीकी राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन NOAA का कहना है कि फिलीपींस, इंडोनेशिया और जापान सहित कई क्षेत्रों में सुनामी लहरों का खतरा है। NOAA ने चेतावनी दी है कि 1 से 3 मीटर ऊंची लहरें फिलीपींस के तट तक पहुंच सकती हैं, जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया के तटों पर 0.3 से 1 मीटर ऊंची लहरें आने की आशंका है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने ओकिनावा प्रीफेक्चर से लेकर इबाराकी प्रीफेक्चर तक जापान के दक्षिणी तट के लिए सुनामी चेतावनी जारी की थी, लेकिन सोमवार शाम 4:50 पर इसे हटा लिया गया।
0: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 15वें पाठ में ये बताना सीखेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं।
1: चीन से जापान आई फोटोग्राफर मिया ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंडों की तस्वीरें खींचने नागानो प्रीफेक्चर आई है। वो टैक्सी चालक को बताना चाहती है कि उसे जिगोकुदानी यायन कोएन जाना है। वो जगह सर्दियों में ओनसेन के गर्म पानी में बैठे बंदर देखने के लिए प्रसिद्ध है।
0: तो आज के पाठ में सुनते हैं टैक्सी चालक से मिया की बातचीत।
2: どちらまで?
3: 猿の温泉までお願いします。はい、わかりました。こちらは

0: 初めてですか？
1: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
3: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले टैक्सी चालक ने पूछा,
2: どちらまで？
4: कहां जाएंगी?
3: मिया ने उत्तर दिया,
1: 猿の温泉までお願いします。
3: बंदरों वाले ओनसेन जाना है।
4: फिर टैक्सी चालक ने कहा,
2: हाई वाकारिमाश्ता।
4: जी, समझ गया।
2: कोचिरा हाजिमेते देस्का?
4: यहाँ पहली बार आई हैं?
3: मिया ने कहा,
1: हाई हाजिमेते देस।
3: जी, पहली बार है।
1: सारु नो शशिन ओ तोरी नी इकिमास।
3: बंदरों की तस्वीरें खींचने जा रही हूँ।
4: ये सुनकर टैक्सी चालक ने कहा,
2: सो देस्का।
4: अच्छा,
2: क्यों वा समुई करा? सारु गा तकसान ओनसेन नी हाइट्ते मास यो।
4: आज ठंड है, इसलिए बहुत सारे बंदर ओनसेन में बैठे हैं।
3: ओनसेन यानी गर्म पानी के कुंड में नहाने वाले बंदरों का अंग्रेजी नाम है जापानीज मकाक, लेकिन आमतौर पर लोग उन्हें हिम वानर कहते हैं।
4: ये उद्यान दूर पहाड़ पर है। टैक्सी या बस से उतरने के बाद भी यहाँ तक पहुँचने के लिए लगभग आधे घंटे चलना पड़ता है। बर्फ पड़ने के बाद यहाँ तक आना मुश्किल भी हो सकता है, फिर भी बहुत सारे पर्यटक ये उद्यान देखने आते हैं।
3: आज का मुख्य वाक्य है,
1: सारु नो ओनसेन मादे ओनेगाई शिमास,
3: यानी बंदरों वाले ओनसेन जाना है। ये वाक्य याद करके आप टैक्सी चालक को बता सकेंगे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं।
4: इस वाक्य में
5: सारु नो ओनसेन
4: का अर्थ है बंदरों वाला ओनसेन, जिसमें से
5: सारु
4: का मतलब है बंदर,
5: ओनसेन
4: का मतलब है गर्म पानी का कुंड, और नो इन दोनों संज्ञाओं को जोड़ने वाला कारक है। पहली संज्ञा दूसरी संज्ञा की विशेषता बता रही है।
5: मादे
3: का अर्थ है तक, और
5: ओनेगाई शिमास
3: का भाव है कृपया। इसका उपयोग अनुरोध करते समय किया जाता है।
4: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस जगह जाना हो उसके नाम के बाद
5: मादे
4: लगाते हैं और उसके बाद बोलते हैं
5: ओनेगाई शिमास।
3: तो सुनिए और उच्चारण का अभ्यास कीजिए।
5: ओनेगाई शिमास, सारु नो ओनसेन मादे ओनेगाई शिमास, सारु नो ओनसेन मादे ओनेगाई शिमास।
4: अब सुनते हैं टैक्सी चालक और सवारी के बीच एक छोटी सी बातचीत।
6: どちらまでですか？
7: 空港までお願いします。
3: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले टैक्सी चालक ने पूछा,
6: どちらまでですか？
4: कहां जाएंगे?
5: どちらまで
3: में
5: どちら
3: प्रश्नवाचक शब्द है और इसका अर्थ है कहां। ये
5: どこ
3: से अधिक विनम्र है।
4: सवारी ने उत्तर दिया,
7: कूको मादे ओनेगाई शिमास,
4: हवाई अड्डे जाना है।
5: कूको
3: का अर्थ है हवाई अड्डा। इस शब्द में उ और ओ की ध्वनियां लंबी हैं।
4: तो आप भी सुनिए और दोहराइए,
5: कूको कूको मादे ओनेगाई शिमास।
3: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको टोक्यो स्काई ट्री जाना है, तो ये बात टैक्सी चालक को कैसे बताएंगे? टोक्यो स्काई ट्री का जापानी उच्चारण है
5: टोक्यो स्काई ट्री, टोक्यो स्काई ट्री।
3: तो कोशिश कीजिए,
8: टोक्यो स्काई ट्री मादे ओनेगाई शिमास।
4: कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके हाथ में कोई पर्ची या नक्शा हो। मान लीजिए आप नक्शा दिखाते हुए टैक्सी चालक से कहना चाहते हैं कि इस होटल में जाना है। इस होटल के लिए जापानी में हम कहेंगे
5: कोनो होटेरु, कोनो होटेरु।
4: तो कोशिश कीजिए,
6: कोनो होटेरु मादे ओनेगाई शिमास।
3: अब समय है संबंधित शब्द सीखने का। आज हम पाठ की बातचीत में से ही एक वाक्यांश के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये वाक्यांश है
5: お願いします।
4: संज्ञा के बाद
5: お願いします
4: जोड़कर आप विभिन्न अनुरोध कर सकते हैं। जैसे होटल से चेकआउट करते समय ये कह सकते हैं
5: チェックアウトお願いします।
4: कॉफी मंगवाने के लिए आप कह सकते हैं
5: コーヒーお願いします।
4: इसमें कॉफी के लिए जापानी शब्द है
5: コーヒー コーヒー।
3: इसके अलावा रेस्टोरेंट में बिल मंगवाते समय आप कह सकते हैं
5: お会計お願いします।
3: यहाँ बिल के लिए जापानी शब्द है
5: お会計お会計।
4: तो सुनिए और दोहराइए
5: チェックアウトお願いします। コーヒーお願いします。お会計お願いします。
3: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: どちらまで？
1: 猿の温泉までお願いします。
2: はい、わかりました。こちらは初めてですか？
1: はい、初めてです。猿の写真を撮りに行きます。
2: そうですか。今日は寒いから猿がたくさん温泉に入ってますよ。
0: 春さんの知恵袋。
4: और अब बारी है अंश हारू जी की सलाह की। आज हम बता रहे हैं जापान की टैक्सी के बारे में।
3: जापान में टैक्सी का किराया दूरी से तय होता है। ये किराया आप मीटर पर देख सकते हैं, इसलिए मोल भाव करने की जरूरत नहीं है।
4: टैक्सी पकड़ने के लिए टैक्सी स्टैंड जाएं। जापान में अधिकतर हवाई अड्डों, स्टेशनों, होटलों और पर्यटन स्थलों के बाहर टैक्सी स्टैंड होते हैं। शहरों में आप सड़क पर हाथ से इशारा करके भी टैक्सी रोक सकते हैं।
3: आपको टैक्सी का पिछला दरवाजा खुद खोलने या बंद करने की जरूरत नहीं है। इसे चालक रिमोट कंट्रोल से खोलते और बंद करते हैं।
4: टैक्सी खाली है या नहीं, ये आप सामने की खिड़की पर लगे इलेक्ट्रॉनिक सूचना पटल से जान सकते हैं। खाली टैक्सी में पटल पर कांजी अक्षरों से लिखा होता है
5: खुशा,
4: यानी खाली। ये कांजी अक्षर पहले से याद कर लेंगे तो जापान में काम आएंगे।
3: वैसे आप फोन करके भी टैक्सी बुला सकते हैं, और आजकल तो टैक्सी सेवा के ऐप भी उपलब्ध हैं। कुछ में अंग्रेजी भाषा की सुविधा भी है। कम आबादी वाली जगह जा रहे हों तो पहले से टैक्सी बुक कर लेना अच्छा रहता है।
4: यूं तो टैक्सी सुविधाजनक होती है, लेकिन बड़े शहरों में अक्सर जाम लग जाते हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा समय लग जाता है। आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि यात्रा का समय बढ़ने पर किराया भी बढ़ जाता है।
3: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
4: अगले पाठ में मियां बंदरों वाला ओनसेन देखेंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। और अब कुछ मजीद खबरें। एक स्वीडिश थिंक टैंक का कहना है कि कुछ रियासतें कौमी ताकत के आलात के तौर पर जौहरी हथियारों पर ज्यादा इन्हिसार कर रही हैं और ऐसे हथियारों की तादाद और किरदार को कम करने की कोशिशों को उलट रही हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पीर को अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की। उसका कहना है कि जौहरी हथियारों से लैस ममालिक के पास जनवरी 2026 में अंदाजे के मुताबिक 12,187 वॉरहेड्स थे, जो एक साल पहले के मुकाबले में 54 कम हैं। एक अंदाजे के मुताबिक रूस के पास 5,420 वॉरहेड्स हैं। इसके बाद अमेरिका के पास 5,042 वॉरहेड्स हैं। ख्याल किया जाता है कि दोनों मालिक कुल आलमी तादाद के 80% से ज्यादा के मालिक हैं। इंस्टीट्यूट का कहना है कि चीन के पास 620 जौहरी वॉरहेड्स का तीसरा सबसे बड़ा जखीरा है और ये कि उसके जौहरी हथियार किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले में तेजी से बढ़ रहे हैं। एक अंदाज

0: अंदाजे के मुताबिक 4012 या 30% से ज्यादा वॉरहेड्स मिसाइलों और हवाई जहाजों के साथ तैनात किए गए थे। ये साल ब साल तैनात करदा वॉरहेड्स में तकरीबन 100 का इजाफा है। फरवरी में अमरीका और रूस के दरमियान जौहरी हथियारों में कमी का आखिरी मुहायदा न्यू स्टार्ट ट्रीटी खत्म हो गया था। मार्च में फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने ऐलान किया था कि उनका मुल्क अपने जौहरी वॉरहेड्स की तादाद में इजाफा करेगा। ओपेक प्लस के 7 अरकान का कहना है कि वो अगले माह खाम तेल की पैदावार में इजाफा करेंगे। सऊदी अरब और रूस समेत तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक ने इतवार को एक ऑनलाइन इजलास मुनक्किद किया। मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसने 1 मई से ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से अलहदगी का ऐलान किया था, उसने इतवार के इजलास में हिस्सा नहीं लिया। 7 मेंबरान का कहना है कि वो जुलाई में भी जून के बराबर यानी योमिया 1,88,000 बैरल पैदावार बढ़ाएंगे। ये मुसलसल 4th महीने पैदावार में इजाफा होगा। अब नए हुरमुस के जरिए तेल की तरसील पर पाबंदी बरकरार है। ख्याल किया जाता है कि पैदावार में इजाफा आबी गुजरगाह के मुमकिन खुलने के रद्द अमल में है। जुमे के रोज न्यूयॉर्क में WTI खाम तेल के मुस्तकबिल के सौदे $90 फी बैरल की बुलंद हद में रहे। इसकी वजह यह तशवीश थी कि अमरीका ईरान तनाजे के खात्मे के मुजाकरात का मुस्तकबिल दोबारा गैर वाज़ेह हो गया है। हिस्सिस इशारिये निक्के 225 ने पीर को इब्तदाई लेन देन में खसारे को बढ़ा दिया। मार्केट के ताजरों ने पिछले हफ्ते अमरीकी हिस्सिस मंडी में गिरावट से एक इशारा लिया है। सेमीकंडक्टर से मुतालिका हिस्सिस के लिए फरोख्त के ऑर्डर्स गालिब है। इंडेक्स मुख्तसर तौर पर 4.7% या 3,100 पॉइंट्स तक गिर गया। टेक हैवी नैसडेक में सबसे बड़े फर्क के इंदराज के साथ गुज़श्ता जुमे को न्यूयॉर्क में अहम इशारे गिर गए। अमरीकी मुलाजमतों की एक मजबूत रिपोर्ट ने सरमायाकारों में तशवीश पैदा कर दी है कि फेडरल रिजर्व शराय सूद में इजाफा कर सकता है। आजिर AI से मुतालिका हिस्सेस के बारे में मुहतात हो गए हैं, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी आई।
1: अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां। अमरीकी अर्जियाती सर्वे ने बताया है कि आलमी मियारी वक्त के मुताबिक इतवार की रात 11:00 तकरीबन 38 मिनट पर जनूबी फिलिपाइनी जजीरे मिंदानाओ में शदीद जलजला आया। जलजले की शिद्दत का तखमीना 8.2 बताया गया है। इसराइली फौज के मुताबिक इतवार की रात 10:00 के फौरन बाद ईरान ने इसराइल की जानिब मिसाइल दागे हैं। इसराइल की फौज का कहना है कि इसराइली फिजाइया ने मगरबी और वस्ती ईरान में अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और वीडियोज के लिए हमारी वेबसाइट है nhk.jp/urdu।